0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले मध्याह्नको ठीक 12 बज्यो।

सिरिजले ल्यायो नयाँ एलजी एसेन्सियल सिरिज। अब किफायती मूल्यमा रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन, एसी को कम्प्लिट रेन्ज, 10 वर्षको वारेन्टी सहित 0% नो कस्ट इएमआई। नागरिकता भए पुग्छ, हरेक घरको खुसी, घर घरमा एलजी। एलजी, लाइफ्स गुड।

सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।